0: रेडियो सुनो 91.7 FM कतर्स फेवरेट रेडियो स्टेशन।
1: आज प्यार की होड़ी
2: दिल बोले तो
3: हार्ट हार्ट
2: हमारा यार सौदा सौदा
3: ओहो
1: दोनों डील करा।